पौड़ी न त्रिकरिजी अपित न त्रि सतगुरु पाया एहो जो पोते जन्म प्रमेत सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नि सब सुन लोक सभाया सतगुरु मिले सच पाया जी जो आप की आया जी सच सतगुरु आया जी सच सतगुरु आया असम हल्ला चौथा।

सांक है सितंबर स्वामी सच में अठे साच रहे सबको सच समावे। रिक कह रहे भरपूर राम नाम देवा में सूर नहीं ले प्राशत जाहे।

और सब को आके अपना जिसने स्वतंत्र दिया किता है आपको अपना पहले पसंद दिया है करना नहीं तक तक है तो कर बहुत दिया है मंदा किसने आखिर

बल होया बंधन सुटे सब किस हो तू पाए नानक सब किस तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय सतनाम सिवाहे गुरु साहेब जी वडहंस महला तीजा।

गुरु गरीब नवाज साझीवालता दे उपदेशक बाणी के बोहे थो धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी तना दी पावन और मुबारक हजूरी अंदर गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पावन अस्थाना उपर जुड़मिल बैठे गुरु प्यारे हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश कृपा वरताई है जो अपने पावन चरणा कमलों पास जुड़ के बैठन दा सुभाग सतगुरु गुरु बाबा जी ने बख्शिया है। आओ गुरु प्यार वालिओ जो धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन बाणी दियां लड़ीवार विचारां चल रहियां ने उन्हां चल रहियां लड़ीवार गुरबाणी विचारां दे नाल सांझ पाईए। विचारां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी कृपा करन अपना रहमत भरिया हथ सर ते रखण। मालिक जी आप रसना उत्ते वरत के पावन शब्द और गुरबाणी दी विचार सतगुरु आप करवा लैन और आप सरबत संगत असीस बख्शो। कोई रसना वांझी ना रखे दोवें हथ जोड़ अपनियां मन बिरतियां एकागर करदियां लवाओ गुरु चरणा विच हाजरी अदब सहत सरबत संगत मिल करके

0: चुक माफ करुनी सिख पढ़ दे सुन दे सर्वत लाहे बंद होवना नानक नाम चढ़दी कलंक तेरे पाने सर्वत दा पला। दोहरा गया भई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी माने ओ जो प्रभु को मिल वोच है राज करेगा खालसा खुआर हुए सब मिलेंगे खुआर हुए सब मिलेंगे। बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

दो सब तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे होए न जाने तुमरा अंत उचे ते ऊचा सगल सुमगरी

तेतावन का सदका सर्ब सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहर शरियात, देग तेग फता बर्द की पैद पंथ के जीता। श्री साहब जी सुहाय, खालसा जी के बोलबाली भला दे। सिखा नु सिखी दान, केस दान, रहत दान, भवेक दान, विशाह दान, भरोसा दान, दाना श्रद्धा नाम दान। श्री अमृतसर साहिब

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद ता

नोई आसा महला चौथा तू करता सत्यार मेंडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू दे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी ते आया जिसनों कृपा करें दिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया तुद आप विछोड़िया आप मिलाया तू दरिया हो सब तुझ ही माहे तुझ बिंदु जा कोई नाहे जी जंत सब तेरा खेल वियोग मिल विछोड़िया संयोगी मेल जिसनों तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख वखाणे जिन हर सेवया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिंदु जा अवर न कोई तू कर कर विखे जाने ही सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सर्वरड़े पाईले निवासा पाणी पावक तिन है किया पंकजो महो पग नहीं चले हम देखा तह डूबियले मन एक न जे तस मूड मना हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जती सती नहीं पड़या मूरख मुगदा जन्म पया प्रणमत नानक तिन की शरणा जैन तू नाही विसरया आसा महला पंजवा भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा किते ना काम मेल साधु संगत भज के भर नाम स्रंग जाम हलाग पव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ जब तब संजम धर्म नाक माया सेवा साध न जन्या हर राया को नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जन्या हर राया को नानक हम नीच कर्मा शरण परे की रखो हो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चाओ पाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित्त की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सवाय तुम काब हो आप हाथ दे मोहे बचाव हो सुखी बसे मोरो परवारा सेवक सिख सवय करता रहा मोर अच्छा निज कर दे करिए सवैरन को आय संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊ जो वर चाहो सो तुम ते पाऊ
एवक सिख मारि तारी हे, चुन चुन शतर हमारे मारी हे, आभाद मुझे उबरी है, मरण काल का त्रास निवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रियास्तु जो करी हो रक्षा, राख लो मोहे राखण हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बापतरा, काल पाए शिवजो अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षण उपजायो, आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सेवगण सुख दियो, शत्रुन को बलमो वध कियो, कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछाणत, चिंटी दे कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछन्ने, कट कट के बड़ बड़ की जन्ने, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देहे अपारा, जब आकर्क कर तुहो कब हूँ, तुम वह मिलत देहे धर सब हूँ, जेते बदन सृष्ट सब तारे, आव आपनी बूझे उचारे, तुम सब ही ते रहित नरालम, जानत भेद भेद अर आलम, ड्रंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा, ताको करपाहण अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत नह पिव, आप आपनी बुध है जेती, परिणत भिन्न भिन्न तो है तेती, तुम्बरा लखा ना जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा, इक्कै रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कहीं पूपा, अंडज जे रज से ताज कीनी, उत्पुज खान बहोर रच दीनी, कहो फूल राजा हवै बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आदि जोगादि स्वरूप स्वयंभव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे अबार असिख संघरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रणगाता, जे आस तुझ तब शरणी परे, तिनके दुष्ट दुखत हवाए मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को इक बार ते है, ताके काल निकट न है,
रक्षा होए दाही सब कल्ला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्कल्ला कृपा दृष्ट तन जाहे नहरे ओ ताके ताप तनक मय हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शहा शवय सके ना कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा

सर्वठोर मोह सहाय दुष्ट दोखते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जबते तुम्हारे तबते कोहूँ आँख तर नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाय बहुपेद कहें हमेक ना जान्यो।

दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तोहारो द्वार बही गही की लाज अस गोविंदास तोहार सगल द्वार को छाड़ के।

रामकली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावन आइयां शब्द तां गावो हरी केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मसारना अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाहा तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैना भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जैना इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंशब तित घर सुभागे घर सुभागे शब्द बाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुत वास कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तैं सुख होआ तित घर अनहद बाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते बनी कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा पर बुरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जेको खावै जेको पुंचै तिसका होए उधारो एह वस्त तजी रह जाई नित नित रख और तारो
तम संसार चरण लग तरिया।

0: तन मन थी वे हरे आ तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिले आ नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरे आ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
1: तू ठाकुर तुम पहर दास जियो पिंड सब तेरी रास।

चलायो सब सीखन को का मैं गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ कहो मिलवो चै खोज शब्द मैं।

सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाह देशाह, जिस पास बैठिया सोही है सवना दा वैसा हो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सोरठ महला पंजवां, कर दूजा अष्टपदियां, इक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटकयो, अधिक आवद मादे। पाठ पढ़ियो अर वेद विचारियो, निवल पयंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटकया, अधिक आवद भादे।

आर पर्य स्वामी के द्वारे दिजय बुद्ध भविका रहाओ मौन भय कर पाती रह नगन फ्रियो बन माही तट तीरथ सब तरती प्रमेय

सिर करवत तराए मन की मैल ना उतरे एह बिद जे रख जतन कराए। कनक कामनी हैवर गैवर बहु बिद दान दातारा अनबस्तर भूम बह अर्पे न मिले हर द्वारा। पूजा अर्चा बंदन डंडो

न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर कर रहा वड़ी आर जा फिर फिर जन्मे हर स्यों संग न गया राजलीला राजन की रचना करे आ हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन जोआ नरक कोर का द्वारा हर कीरत साध संगत है सिर कर्मन कै कर्मा को नानक दिस भयावरापत

अयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन रत्ता तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन रत्ता रहाओ दूजा।

0: परम सन्मान योग धन धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र चरणा विच गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे गुरु प्यारे सतसंगी जनों सतगुरु महाराज की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ अदब प्यार सत्कार दे नाल कीर्तन रूप विच गुरबाणी का लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहासक विचार धन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी दे पावन इतिहास नाल जुड़न वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है मन बिरतियां नू एकाग्र करदे होए निमाणे जे हो के समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा च जुड़न दा यतन करिए। सबना दियां हाजरियां समरथ सतगुरु जी दे पावन चरणा विच लग जान। आप जी रोजाना इस अस्थान तो श्री गुरप्रताप सूरज ग्रंथ दे राही कवि संतोख सिंह जी दे द्वारा दशमेश पिता अमृत के दाते सरबंस दानी बादशाह दरवेश शाहे शहनशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन इतिहास नूं लड़ीवार सरवण करदे आ रहे हो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आनंदपुर साहिब दी पावन धरती हजारां सिख संगतां गुरु महाराज दे चरणां विच आ के शरदा भावना दे नाल जुड़दियां ने जो निम्रता प्यार भरोसे दे नाल सतगुरु जी दे दर ते आउंदा है सतगुरु महाराज जी तो अपार बख्शिशां खुशियां प्राप्त हुंदियां ने। पर जे कोई अहंकार दे नाल चढ़ के आउंदा है फिर वह सतगुरु जी दियां बख्शिशां प्राप्त नहीं कर सकता। बाई धार दे राजे आनंदपुर साहिब बहुत भारी वड्डा लश्कर लैके चढ़ाई करके आए और बहुत लंबेरे समय तो यह जंग चल रही है। वख वख राजियां ने अहंकार किया कि असी गुरु गोबिंद सिंह जी नू मिटा देंगे जां आनंदपुर साहब तो बाहर कर देंगे। गिणती दे सिंह ने पर पता उदों लगा जदों गुरु के खालसे ने हजारां लखां सिपाहियां दा मुकाबला डट के किया और राजा केसरी चंद जो बहुत वड्डा अहंकार दे विच अगे नूं वधदा ते भाई साहिब भाई उदय सिंह जी जिन्हां उत्ते गुरु महाराज की बहुत वड्डी बख्शिश है किरपा है केसरी चंद का सिर जिहड़ा उन्होंने उतार दिता। सिपाही जिहड़े ने वो घबराए ने राजे भी घबराए ने कि इन्ना वड्डा राजा जिहड़ा अज इस जंग दे विच मारिया गया। और दूसरे पासे जिस हाथी दे भरोसे सी कि ये लोहगढ़ दे किले दा दरवाजा तोड़ देगा उस हाथी दा भी रुख मुड़ गया। हजारां सिपाही उस हाथी दे पैरां हेठ लताड़े गए और कुछ जड़े ने वो मारे गए ने। हजे भी कुछ राजे ऐसे अहंकारी ने ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਡੋਜੀਆ ਰਾਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸੈਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀ ਰਾਜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੈਸਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ।
1: ਸਿੰਘ ਸਭਾਰੇ ਖਾਲਸੇ ਮਰੇ ਸੋ ਦੀਨੇ ਦਾਹੇ।
0: ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਮਸਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਥੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਰੇ ਖਾਲਸੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦੀਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1: ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਾਗੇ ਤਬ ਹੈ ਜਰਾਹੇ।
0: ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਘਾਇਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਰਾਹਾ ਇਹ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਦ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵੈਦ ਵੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ

0: इस जंग विच इस युद्ध विच जो भी कुछ हुण माहौल बनिया है असी आए तो इत्थे जितण वास्ते सां पर इदा लग रहा भी हुण असी हार दे बिल्कुल करीब बिल्कुल कोल खलोते हाँ।
1: मरे सुबटको शौक जे करनो तो क्यों करो चढ़ाई
0: ते हुण मैनू इदा लग रहा भी आपां सारे रो रहे हैं वैराग कर रहे हैं शोक कर रहे हैं ते फिर साडी सूरवीरता किथे गई फिर अपने आप नू असी राजे कहाउंदे पए हां फिर जे इत्थे अपने साक संबंधियां लई सिपाहियां लई जां राजे लई रो के ही वापस जाना है ते फिर साडे लई ये शर्म

कोट परदी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना परियारे।

आज्ञा वसंसेला औद कट है नारी मन गुर मिल काज सवारे राव हे संसार विकार संसे मैं तरह ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पियावै ए रस अकथ कथा तिन जानी न्या को आए सोई बिहाजो हर गुर ते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे।

सवैये महले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख ध्याए बरदाता संत।

दुर्त निवारण शब्द सरे, गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे, गावे इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जाने हो, कब कल सो जस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन मान्यो, गावे जनकाद जुगत जोगेसर, हर रस पूरन सर्व कला, गावे सनकाद साध सिदादिक, मुन जन गावे अचल छला, गावे गुण तोम अटल मंडल वे, भगत पाए रस जाने ओ, कब कल सो

छिन मह त्यागत नांग सिधारू, सूर न वीर न मीर न खानम, सांग न को दृष्ट निहारू, मित्र न पुत्र।

ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख है।